listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: यार मुझे 10GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
3: क्या, कैसे?
2: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
3: रोज मिलता है क्या?
2: हाँ रोज मिलता है।
3: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: रेडियो

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
3: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network. You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi, मैं हूँ सोहाली खान and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
3: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, Jio Bindas.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार, मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ, रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: रेडियो ऑल।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हाय, मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

देखिए नई नई खुशियां तो हमें मिल गई थी जैसे ही फ्राइडे ने जो है दस्तक दी थी हमारे दिलों पर, लेकिन अब फ्राइडे के जाने के बाद सैटरडे के आने के बाद ऐसे गम सा हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कसस शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज के जाने का दुख करते हैं जो अब चला गया है, जो अब लौट कभी नहीं आएगा, लेकिन जो प्रेजेंट में है उसे इंजॉय ही नहीं करते। तो कल जा चुके फ्राइडे के बारे में मत सोचो, क्या नहीं कर पाए वो मत सोचो, ये सोचो कि आज सैटरडे है और आज क्या कुछ कर सकते हो, क्योंकि देखो ज्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, माना जो है फुल डे वाला वीकेंड जो है जा चुका है, सैटरडे है, कुछ लोगों की छुट्टी होती है, कुछ लोगों का हाफ डे होता है और कुछ लोगों का फुल डे भी होता है। लेकिन देखो यार गाइस, सैटरडे है, आप जब मान लो कि यार आज हमें फ़न करना है, आप उस दिन फ़न कर सकते हो, चाहे आप अपने ऑफिस से 12 आवर शिफ्ट क्यों ना करके आए हो। यस, कई बार हो जाता है आपको आने में जाने में ऑफिस में काम करने में 12-13 घंटे तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। सो देखो यार, बस करना कुछ नहीं है, आपने जो है जल्दी से अपना फ़ोन उठाना है, मुझे व्हाट्सएप करना है 3311063 पर, बाकी आपको फ़न कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सो जल्दी से फोन उठाओ, मैसेज करो गुड मॉर्निंग कशिश या फिर हैप्पी वीकेंड कशिश, या मेरे बारे में कुछ भी कहना चाहते हो तो वो कह दो। बाकी एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय करो और जरा लॉज क्या उसके बाद जरा ये मौसम का क्या मामला है इस पर बातचीत करते हैं। स्टे ट्यून्ड, आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: केके जी कुछ तो कर देते हैं हमारी सोल के साथ, कुछ तो कर देते हैं अपनी आवाज के साथ कि ना थोड़े मतलब जैसे ही गाना खत्म होने वाला होता है ना एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, बुरी नहीं बोलूंगी इस फीलिंग को, अच्छी भी बोल सकते हैं, एक अजीब सी यू नो पता नहीं मुझे, अगर आप लोगों को समझ आए तो बता देना मुझे। फिलहाल वेलकम 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूं आपकी गजुश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूं मैं, और अगर एटलीस्ट मस्त नहीं बना रही हूं तो कोशिश तो कर ही रही हूं ना। देखो अब देखो यार, मौसम का मैं मामला ना समझ नहीं पा रही हूं, ये बिल्कुल किसी मैथ्स प्रॉब्लम की तरह लग रहा है। जब लगता है कि ओ अब तो समझ आ गया है क्या, ओ ह्यूमिडिटी हो रही है, गर्मी हो रही है, तभी बादल आ जाते हैं। एंड बादल आने के बाद जब कार के अंदर बैठे रहो तो ऐसा लगता है ओ वाओ अरे मौसम बाहर कितना अमेजिंग लग रहा होगा ना, और जैसे ही पैर बाहर रखो पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीना जो है वो बहने लग जाता है। सो इस वक्त अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो दोहा में 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, मोस्टली सनी रहने वाला है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 40 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, ह्यूमिडिटी एट इट्स पीक होने वाली है 13 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो विंड है वो चलने वाली है, एंड सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए सिर्फ अपने फेस पे नहीं, अपने हाथों पर, अपनी नेक पर, हर जगह जो है अच्छे से सनस्क्रीन लगा के निकलिएगा, क्योंकि फिर वरना ना मैच नहीं कर पाएंगे। एंड कई लोगों के यहाँ जो है फेस रिकॉग्निशन से एंट्री होती है, अटेंडेंस लगती है, तो अगर टैन हो गए तो फिर पहचान नहीं हो पाएगी आपकी, है ना है ना है ना है ना। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए एंड उसके बाद जरा लौट के आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने वीकेंड पर क्या कुछ किया। एंड अगर आज आपकी छुट्टी है या आज काम से आप जल्दी फ्री हो जाएंगे तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

पता नहीं आज क्या हो गया, केके के गानों से ना बहुत रिलेट कर पा रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ एयर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। सो यार कतर ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर एंटरटेनमेंट की कोई कमी आपको हो ही नहीं सकती। बाहर इतनी गर्मी हो रही है और हमारा मन नहीं होता बाहर जाने का, लेकिन एसी जगह भी कम नहीं है। ऑक्सीजन पार्क गई थी कल मैं एंड लिटरली मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि एक पार्क है एंड वहाँ एसी लगा हुआ है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार कि गर्मी हो रही है या ह्यूमिडिटी लग रही है, मज़ा आ रहा है। वहीं पर आप किसी भी मॉल में चले जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेज एक्टिविटी होती रहती है जिससे आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तो मैंने तो ये किया। खैर अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सजेशन है मेरे लिए जो आप मुझे दे सकते हो कि यार कशिश अभी तुमको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कतर में, एक बार ये भी ट्राई करो, तो मैं वो भी ट्राई करने को बिल्कुल तैयार हूँ। मैं ओपन लाइक मुझे ना मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। तो कोई अच्छी जगह जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो वो आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर। जल्दी से फ़ोन उठाओ, मुझे बताओ और मैं इसके बदले में आपको ये बताऊंगी कि आप अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो। हाँ जी, स्ट्रेस कम करने का एक आसान सा तरीका जो है, लो बजट तरीका, मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फिलहाल एक अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो। लुटेरा मूवी का ये ट्रैक है एंड उसके बाद जो है हम बातें करेंगे स्ट्रेस के ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: जरा हटके जरा बचके मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कसर सन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। एटलीस्ट देखो मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अब अगर आपको छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस हो जाता है, आपको जो है एंशियस फील होने लग जाता है कि यार आज का जो है दिन चला गया, मैंने सफाई नहीं करी, या फिर वो जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, बॉस जो है कल क्वेश्चन करेगा क्या करेंगे, या मम्मी जो है वो बहुत प्रेशर दे रही है शादी का, ऐसी चीज़ों का जब स्ट्रेस हो जाता है तो हमें लगता है कि यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम यू नो किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, लेकिन इतनी छोटी प्रॉब्लम भी नहीं है कि इससे उभर पाएं, तो क्या किया जाए। सो देखो अभी आपको जो है मैं बताने वाली हूं कि अगर छोटा मोटा स्ट्रेस हो तो इससे कैसे बचा जा सकता है। सो एक आइस क्यूब लेनी है आपको। ऑब्वियसली देखिए क्या है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आपके फ्रिज में आइस क्यूब्स तो होंगी, सो आपको एक आइस क्यूब लेनी है और उसको अपनी हथेली पर रखना है, यानी अपने पाम पर रखना है, और उसको टाइटली बंद करना है एंड उसे जल्दी से जल्दी मेल्ट करने की कोशिश करनी है। अब क्या होता है कि ये जो इंटेंस टेम्परेचर ड्रॉप होता है ये फोर्स करता है इमिडिएटली सेंसरी ग्राउंडिंग को, जो आपके ब्रेन को ये स्ट्रेट यू नो मैसेजेस देती है कि एंजाइटी का जो लूप है उसे बंद कर दो। तो काफ़ी बार जो है ऐसा होता है कि जब आप अपने माइंड को किसी और जगह पर फोकस करने की कोशिश करते हो तो वो आपको एंशियस कम करता है। अब ऐसे टाइम पे जो है मेडिटेशन करना या किसी और जगह ध्यान लगाना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए अपने ब्रेन को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि एक आइस क्यूब आपको अपने पाम पे लेनी है, उसे जल्दी से जल्दी पिघलाने की कोशिश करनी है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो उसका ध्यान भटक जाएगा एंड वो काम हो जाएगी। मैंने अभी तक ये वाला सच में तरीका जो है वो ट्राई नहीं किया, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर्स कहते हैं कि इससे यू नो आपकी पैनिक अटैक्स जो है वो काम हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी काम हो जाएगी। एक बार जो है ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा, मैं भी अगर ट्राई करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी कि ये कितना वर्क करता है। फिलहाल ओलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर माशुगा आ रहा है आपके रेडियो सेट पर कॉकटेल 2 मूवी से, इसे एंजॉय कीजिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर song of the hour.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मैं हूँ।

0: ऑफ कोर्स, इसमें कहने की क्या बात है, ऑफ कोर्स तुमसे प्यार है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी गजल शो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, ना ऐसे गाने बन रहे हैं और ना अब ऋतिक रोशन अपनी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसे दे रहे हैं जैसे इस मूवी में देते हैं। मतलब थोड़ी सी ओवर एक्टिंग जो है दोनों ने ही की है, लेकिन फर्स्ट मूवी, आजकल के जो एक्टर्स हैं वो तो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ को छोड़कर। एंड वो कुछ जो है वो भी अपनी सेकेंड या थर्ड मूवी में असली काम दिखाते हैं, फर्स्ट मूवी में वो भी कुछ ना कुछ ऐसा फंबल ही कर जाते हैं। एंड ज़्यादातर तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो नेपोटिज्म के चलते ही लोगों को शोज मिल रहे हैं या फिर मूवीज मिल रही हैं, एंड उसमें भी वो सेकेंड और थर्ड मूवी आते आते तक अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि ठीक है हमें स्टार्ट जो है अपने पेरेंट्स की वजह से मिला है, लेकिन आगे जो है हम अपने टैलेंट के बल पे जा रहे हैं। एंड यही जो है जेंजीज भी कर रहे हैं, राइट। सो किसी भी यू नो जॉब इंटरव्यू में अब जेंजीज अपने पेरेंट्स को लेकर जाते हैं। यस, एक नई रिसर्च ये कहती है कि जेंजीज अपने पेरेंट्स को लेकर जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, एंड उसमें से 80% टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स उनके बॉसेस से, उनके मैनेजर से बात करते हैं कि देखो हमारा बेटा तो ऐसा है, जैसे पीटीएम में हुआ करता था। देखो मैं अपने मम्मी पापा को अपने बॉस से मिलाने का रिस्क अभी भी नहीं ले सकती, तो इंटरव्यू में ले जाना तो दूर की बात है। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का आपके ऑफिस में इंडल्ज होना या आपके मैनेजर से बात करना या आपके इंटरव्यू में आपको अकंपनी करना क्या सही चीज़ है, या इसके जो है मतलब और ऐसे इफेक्ट पड़ सकता है आपकी यू नो करियर पे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे? कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में भी है, कुछ रिसर्चर्स ने कही हैं और कुछ आप लोग बता दीजिए 3311063 पर। थोड़ी सी देर में आने के बाद इस पर फुल ऑन चर्चा करने वाले हैं। आपको बस मुझे इतना बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो नया ट्रेंड शुरू किया है जेंजीज ने अपने पेरेंट्स को इंटरव्यू पे लेके जाने का, या अगर ऑनलाइन इंटरव्यू तो उसमें अपने साथ बिठाने का, ये कितना सही है? फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। एंड 3311063 हमारा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल यो यो हनी सिंह जी की आवाज में 1000 माइल्स गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। जब मैं बहुत छोटी थी ना, जब मैं स्कूल में थी तभी गाना रिलीज हुआ था, एंड सच में हम इसके लिरिक्स जो है वो अपनी डायरी में लिखा करते थे कि यार सी मुझे याद हो गया है। कोई 5th-6th स्टैंडर्ड में रही होंगी मैं, तो चलिए उस नॉस्टैल्जिया को जो है रिलिव करते हैं। आप ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करके आइए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool song.

अजनबी कहाँ रहे यार अब आप और मैं, अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं ना, मतलब एकदम जिगरी वाले फ्रेंड्स। बातचीत कर रहे थे कि आजकल जेंजीज ने एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू किया है, जहां पर वो अपने पेरेंट्स को लेकर इंटरव्यू देने चले जाते हैं जॉब के लिए, या फिर अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो उसमें जो है पेरेंट्स कई बार मैनेजर से बात करते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे बात करते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा कितना क्रिएटिव है। यार ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया ना जिस तरीके से जो है एडमिशन के लिए हम स्कूल्स में जाया करते थे एंड हमारे पेरेंट्स बताया करते थे कि नहीं नहीं सर, हमारी बच्ची को तो पूरी ABCD आती है, हमने पूरा इसे तैयार करके रखा है। बेटा बेटा राइम सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ सर को, एंड फिर वो खुद सुनाने लग जाते थे एंड उनके पेरेंट्स के प्रेशर में आके एडमिशन देने वालों को हमें एडमिशन देना पड़ता था, स्कूल वालों को हमें एडमिशन देना पड़ता था। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यूअर्स भी यही कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे से हमें पोर्ट्रे करते हैं कि उन्हें देना ही पड़ता है जॉब हमें, कि यार ठीक है अच्छा कर लेगा, मम्मी ने बोला था। अब ये बताओ कि जॉब पे तो आपको खुद जाना है, ठीक है काम तो आपको खुद करना है, मम्मी पापा काम करने तो नहीं आएंगे, फिर कैसे प्रूव करोगे? मतलब हर बार हर प्रोजेक्ट को देने के लिए मम्मी थोड़ी आएगी कि नहीं नहीं इसने बहुत मेहनत करी है, इसने ना रात को जागकर मेहनत की, देखो उसके डार्क सर्कल्स हो गए हैं, इसने ना खाना भी नहीं खाया था उस दिन, इसकी मेहनत को आपको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर इसने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बनाई है तो, या उसमें क्लाइंट जो है वो खुश नहीं हुआ तो? इसने तो मेहनत की है ना, बच्चे की मेहनत देखिए सर। यार मम्मी पापा का दिल जहाँ मम्मी पापा का दिल ही होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो उससे आप जीत ही नहीं सकते। अगर मेरी मम्मी मेरे बॉस से बात कर ले तो वो तो यही बोलेगी कि यार बच्चे को छुट्टी दे दो यार, इतना क्या काम करते हैं, सिर्फ संडे थोड़ी ना होता है, सिर्फ फ्राइडे थोड़ी ना होता है, आपको और छुट्टी देनी चाहिए, खाने का ध्यान ही नहीं रखता है, देखो बिल्कुल टिफिन वैसे का वैसा वापस आ जाता है। क्या पता मम्मी को कि कैंटीन में जो है कैफेटेरिया में सैंडविच और समोसे खाए जा रहे हैं। क्या किया जाए यार मम्मी का, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। कई बार तो इतनी क्यूट क्यूट चीजें मम्मी बोल देती है ना कि उससे रिकवर करना मुश्किल होता है, और शायद मैनेजर्स के लिए बॉस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंजीज का ये कल्चर चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन हर बार आपकी लाइफ में एक ना ऐसा हुआ होगा एक ना एक बार जब आपके पेरेंट्स ने ये जरूर कहा होगा कि मैं बात करता हूं तुम्हारे बॉस से, मैं बात करती हूं तुम्हारे बॉस से। अगर हुआ है तो यस लिख दो जल्दी से आकर व्हाट्सएप 3311063 पर। फिलहाल मैं क्या करूं वाली सिचुएशन में मैं क्या करूं वाला गाना जो है आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, बर्फी मूवी का ये ट्रैक है, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कोई बात नहीं है जी, आप लोगों के सामने कोई बात मैं ऐसी कर दूं जो आपको पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं मैं लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूं मैं। अब देखो यार, कल आई डोंट नो आपने क्या देखते हुए जो है अपना दिन बताया। मैंने तो मैं वापस आऊंगा देखी, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स पे जो है अब रिलीज हो चुकी है। एंड आपने भी अगर देख ली है और अब आप सोच रहे हो कि यार क्या देखा जाए, तो एक मूवी मैं आपको रिकमेंड करने के लिए आ गई हूँ। मूवी का नाम है द मेहता बॉयज, 2025 की मूवी है और एक हार्ट टचिंग रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा है। एक सक्सेसफुल यू नो डेब्यू डायरेक्टोरियल अगर मैं बात करूँ सो वो है बमन ईरानी का, एंड 7.1 की रेटिंग जो है बहुत सारे लोगों ने इन्हें दी हुई है। तो एक बार जाकर फादर सन रिलेशनशिप पे अगर आपको कंटेंट देखना पसंद है तो एक बार जाकर ज़रूर से देख लेना द मेहता बॉयज। एंड कैसी लगी ये मूवी आकर मुझे आप बता सकते हो 3311063 पर। बाकी अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए सो वो भी वेलकम है जी 3311063 पर। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: थे। बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

उसी मूवी से जावेद अली की आवाज में तू मेरी रोजा गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कसुस, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त जो है हम बना रहे हैं। अब देखिए यार, इस गर्मी के मौसम में फैशन तो दूर की बात है, नॉर्मल कपड़े भी जो है एक उलझन सी जो है क्रिएट कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यार ओ माय गॉड, इतने सारे हैवी कपड़े क्यों पहनने पड़े हैं। कई बार लोग यूनिफॉर्म को लेकर ऐसा सोचते हैं, कई बार लोग जो है जीन्स को, डेनिम को लेकर ऐसा सोचते हैं कि यार इसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव होता तो कितना बढ़िया होता ना, हम फैशनेबल भी दिखते एंड उसके साथ साथ जो है गर्मी भी नहीं लगती। सो कुछ ऐसे फैब्रिक्स जो है मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ जो आप डेली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली इस ह्यूमिड क्लाइमेट से लड़ने के लिए। सबसे पहले आपको तीन चार चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है जब भी आप किसी भी गारमेंट में यू नो फैब्रिक देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले तो वो फैब्रिक बहुत लाइट वेट होना चाहिए, ब्रीदेबल होना चाहिए एंड मॉइस्चर विकिंग होना चाहिए, यानी उसमें मॉइस्चर वो जब आप पहने और आपको पसीना है तो आपकी बॉडी चिपके ना, क्योंकि इससे आपको रैशेज हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। अब इसमें सबसे बेस्ट नेचुरल फैब्रिक्स कौन से हैं, लिनन आप पहन सकते हैं, कॉटन आप पहन सकते हैं, हेम्प आप पहन सकते हैं, रेयन जो है आप पहन सकते हैं एंड अगर सिंथेटिक की बात करें सो पॉलिएस्टर ब्लेंड भी कहीं ना कहीं वर्क कर जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको यू नो चेक करना पड़ेगा। अब ऐसे कौन से फैब्रिक हैं जो आपको इस मौसम में स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं, दैट इज प्योर पॉलिएस्टर एंड सिल्क। सिल्क भले ही आपको कितना भी अच्छा लगता हो लेकिन इस मौसम में आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। वैसे फैब्रिक से मुझे एक और नया यू नो इनोवेशन याद आया है, चाइना ने जो है एक ऐसा फैब्रिक बनाया है जो अगर कट जाता है या गंदा हो जाता है तो वो खुद रिपेयर कर लेता है। यार देखो, यहाँ पर हम कॉटन और लिनन के बीच में फ़र्क जो है वो कर रहे हैं और इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा फ़र्क जो है वो बना दिया। देखते हैं, हो सकता है जल्द ही ये जो टेक्नोलॉजी वाला क्लोथ है, फैब्रिक है, ये हमारे मार्केट्स में भी मिलना शुरू कर दें। फिलहाल फिर अजनबी गाना जो है आर के रेडियो सेट्स पर, चांद मेरा दिल से, इसे इंजॉय करके आइए। फिर ज़रा बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त देश और दुनिया में। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो ओलिव।

0: हर रोज एक ना एक एग्जाम्पल मार्केटिंग का आ जाता है मेरी इंस्टाग्राम फीड पर, जिसे देख के जो है मैं क्या है वो इंग्लिश वर्ड, फ्लैबरगास्टेड हो जाती हूँ। अब देखो, सबका इंस्टाग्राम इस वक्त एक बिलबोर्ड से जो है भर गया है। बिलबोर्ड यानी वही एडवर्टीजमेंट वाला जो बड़ा सा बोर्ड आप रोड्स पे देखते हैं ना, उससे। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अपनी नई मूवी को प्रमोट करने के लिए एक लिविंग हाउस जो है वो उस बिलबोर्ड में ऊपर टांग दिया है, और उसमें एक इंसान जो है पिछले दो दिनों से रह भी रहा है। एंड लोग जितने उस जगह से गुजर रहे हैं उसके लिए कोई पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, कोई उसकी फ़ोटो ले रहा है, कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो जो है एक बोर्ड पर आंसर्स लिख कर बात जो है वो कर रहा है। अब देखिए, मूवी का नाम है द लास्ट हाउस। इस मूवी में जो है ट्रेलर के हिसाब से यही होता है कि सब लोग जो है एक घर में बंद हो जाते हैं, एंड ना बाहर जा पा रहे हैं, ना किसी से बात कर पा रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि काफ़ी महीने गुजर चुके हैं उस फैमिली को उस घर में बंद हुए। एंड वो जब देखते हैं कि कोशिश करते तो उन्हें पता चलता है कि ओ, कुछ और घर भी हैं जहाँ पर लोग हैं एंड वो बंद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, घर के अंदर पेड़ लगाते हैं, इसके ऊपर ये जो पूरी मूवी है ये बनी हुई है। सिमरन ने यही ट्रेलर जो है वो ऑफिस में ही दिखाया था। मैं ऐसी मूवीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ, लेकिन सिमरन अगर मुझे नहीं दिखाती ये ट्रेलर तो मुझे सच में इतना मज़ा नहीं आता। एंड उसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये प्रमोशन का तरीका देखा नेटफ्लिक्स का, तो मुझे लगा वाओ गाइस, एक तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आ गए और ऊपर से ऐसी जो है मार्केटिंग स्किल भी दिखा रहे हैं। यार ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें जो है वो होती रहती है ना, तो लगता है कि हाँ, लोगों में अभी क्रिएटिविटी जो है वो बाकी है। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो। एंड उसके बाद फिर हम आज एक स्पेशल डे है उस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

प्रियंका चोपड़ा अपने मतलब एकदम पीक वाले रोल में जो है इस मूवी में देखे थे. क्रिश मूवी का ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफ पर. वेलकम बैक, मैं हूं आपकी कसूस. शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम. अब देखिए यार, अगर आपको पेट रखने का काफी शौक है एंड एक पेट कैट जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि आज इंटरनेशनल पेट कैट डे है. एंड अगर आप जो है खुद एक पेट ओनर हैं, मतलब कैट ओनर हैं, कैट पेरेंट हैं, या फिर बस आपको कैट्स पसंद है, आपके आसपास कैट्स रहती है, तो आप जो है कुछ फैक्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. अब देखिए, जब एक कैट आपको देख के स्लोली ब्लिंक करती है ना, इसका मतलब ये है कि वो आपको बहुत पसंद करती है ना, आपको आई लव यू कह रही है. एंड जिस तरीके से हम ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना यूनिक, वैसे उसी तरह से कैट्स के ना नोज प्रिंट जो है वो यूनिक होते हैं. जब कैट्स अपने पॉज से किसी सॉफ्ट कपड़े या आपके ऊपर जो है नीडिंग करती है, तो मतलब उनका जो है एक बिस्किट मेकिंग कहते हैं. एंड इसे जो है काफी कंफर्टेबल कहा जाता है, यानी जब जब कैट आपके साथ कंफर्टेबल हो जाती है वो तभी ऐसा करती है. सो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे आज सारा दिन और कल भी पता चलेंगे, क्योंकि तनीषा एक बहुत ही क्यूट से गेस्ट के साथ कल आपसे बातचीत करेगी. फिलहाल आपको जो है एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना मैं सुना रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कोशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास.

टाटा बाय बाय करने का, यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। मन तो नहीं कर रहा है पर जाना पड़ेगा, तभी तो कल लौट कर आ पाऊंगी। तब तक आप अपना सैटरडे एंजॉय कीजिए। मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे थे। तो मैं जाते जाते वही कहूंगी जो मैं हर रोज कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना एंड मुझे मिस करते रहना। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आपको सभी आरजेज मिल जाएंगे। बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो हम पोस्ट करते रहते हैं, सो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए वहां तो देखो आपको आना ही पड़ेगा। बाकी 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आरजेज आपकी सेवा में तत्पर हैं। फिलहाल जो है मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहना, कहते रहना जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, अगर बांध रखी है तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक उड़ान भरने वाले हैं जहाँ पे हम गाने सुनेंगे, सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए क्या हाल है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे मूवी का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। फॉरेस्ट गंप एक बहुत ही बढ़िया मूवी है, मस्ट वॉच मूवीज में से एक है। अगर आपने देखी है तो बढ़िया, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उसमें स्टार्टिंग में एक डायलॉग आता है जहाँ पे बोलते हैं कि लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गेटिंग। तो ये लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से समराइज किया है। जितना भी हम एक्सपेक्ट करें, जितना भी हम ये करें, मगर हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। तो जानिए, अगर नहीं जानते तो फिर क्यों इतना झंझट ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। थोड़ा चिल करना होता है, थोड़ा रिलैक्स करना होता है। कंट्रोल का जो एक हमारा एक थॉट होता है ना कि हाँ हम सब कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ में बस एक्शंस लिखे हैं, रिजल्ट्स थोड़े ना हमारे हाथ में। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

करूंगा या फिर बाहर जाऊंगा या फिर मैं अपने लिए कुछ करूंगा, तो ऐसा कोई स्पेशल दिन आने वाला नहीं है। जो दिन है उसे स्पेशल बनाइए, अपने आप को स्पेशल फील करवाने के लिए किसी स्पेशल दिन का इंतजार मत कीजिए। जो दिन है आपके पास, आज का दिन है, आज कुछ कीजिए। मैं तो कहता हूँ हर दिन कुछ ना कुछ कीजिए अपने लिए स्पेशल फील कराने के लिए। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही यूट्यूब में बैठे हुए कुछ देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो एकदम से एक रील आया कि अगर 2027 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है तो गौतम गंभीर जो होंगे वो पहले ऐसे कोच होंगे पिछले कुछ सालों में जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव आईसीसी ट्रॉफीज जो है वो जीती हैं, और काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे वैसे वो मामला। और मैं ऐसे सोच रहा था कि यार वैसे पिछले कुछ सालों के अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इंडियन टीम का सबसे बढ़िया कोच कौन था, क्योंकि पिछले कुछ साल में अगर हम देखें तो सारे कोचेस इंडियन कोचेस थे। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो मैं तो राहुल द्रविड़ को मानता हूँ और गैरी कर्स्टन को मानता हूँ, जिनके कोचिंग में हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। मगर आपके हिसाब से अभी तक का इंडियन टीम का सबसे बढ़िया कोच कौन सा था, बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। और यही बात बोलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
4: आई एम नंबर 1 रेडियो ओलिव।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
7: ओलिव रिचार्ज।
8: This hour is brought to you by
9: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है डिस्कवर की है। और भाई मैं बता दूं कि ये शायद मेरे ग्रेटेस्ट फियर्स में से एक हो सकता है, मगर हाँ, तो जब भी मैं कोई ऐसे बहुत ही क्लोज्ड स्पेसेस वाले या फिर वो वाटर राइड्स होते हैं ना जिसमें से ट्यूब जैसा होता है और इंसान ऐसे अंदर से जाता है, वो सब देखता हूँ तो मुझे ना हल्का हल्का ऐसे अनईजी फील होने लग जाता है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो सकता हूँ, यानी कि क्लोज्ड स्पेसेस मुझे उतने पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही अनईजी फील कराते हैं मुझे। और सिमिलरली बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ों का डर होता है, तो मैं अपने रिलेटिव्स को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने बोला कि इस फैमिली में तो अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तुम, आपका फियर क्या है? आपको किस चीज़ से डर लगता है? पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, किस चीज़ से डर लगता है मुझे बताइए। आप मैसेज कीजिए 3311063 पर, और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

एक ऐसी चीज जो मुझे कतर के बारे में बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे इंक्लूसिविटी जो है बहुत ही सीरियसली कंसिडर की जाती है। डिफरेंटली एबल लोगों के लिए भी सोसाइटी है, और जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज है, वो सबके लिए अवेलेबल है और इंक्लूसिव तरीके से बनाया गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर बिल्डिंग में क्रैम्प होना और रेस्ट रूम सेपरेट होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करती है कि सोसाइटी में सबकी जगह है करके। और ये इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस ही कतर के प्रोग्रेस में बहुत बड़ा योगदान देता है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बात बताना चाहूंगा मैं। स्पोर्ट्स और कमबैक के बीच में एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है। तो देखिए, स्पोर्ट्स जब हम देखते हैं या फिर स्पोर्ट्स में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। टीम स्पिरिट, कैमराडरी, लीडरशिप, कैसे बिहेव करना है एक सेटिंग में, ये सब चीजें हम सीखते हैं। जीतते वक्त कैसे बिहेव करना है, हारते वक्त कैसे बिहेव करना है, ये सब हम सीखते हैं। साथ ही साथ कम बैक करने का एक स्किल भी हम सीखते हैं भाई। तो ये स्पोर्ट्स में एक सेइंग है, वो ये है कि द गेम इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो जब तक गेम खत्म नहीं हुआ है तब तक हम चीजें पलट सकते हैं, तब तक हम जीत की ओर बढ़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और यही विश्वास जो है जिंदगी में भी कम बैक करने में हमें बहुत हेल्प करता है। और यही बात बताते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जानी, द गेम इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओनली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं बता दूं आपको कि एविएशन के किसी भी लॉ के हिसाब से अ बम्बलबी कैन नॉट फ्लाई। एविएशन के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो बम्बलबी उड़ नहीं सकती, मगर बम्बलबी उड़ती है। तो कहने का मशवरा यही है कि भाई दुनिया जहां अगर बोलता है कि तुम नहीं कर सकते, तो जानी तुम कर सकते हो। बस थोड़ा सा जज्बा दिखाना है, थोड़ा सा जुनून दिखाना है और हौसला रखना है, चीजें तो अपने आप हो जाएगी और सफलता आपकी कदम चूमेगी। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: यार बचपन में ना मुझे एक काम बिल्कुल पसंद नहीं था अपने घर में, वो था पौधों को पानी डालना, मगर मेरे पापा को बहुत पसंद था। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, नहीं उतना छोटा भी नहीं था, 11th 12th की बात थी, और पानी डालना पौधों को मुझे पसंद नहीं था क्योंकि काफ़ी टीडियस टास्क था, ठीक है, दोनों बालकनी में जाना पानी डालना ये सब थोड़ा मुश्किल लगता था मुझे। मुझे लगता था कि मैं और प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ जैसे कि खाली बैठना, मगर पापा बोलते थे करने के लिए। और एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुझे पता नहीं है इनकी वैल्यू क्या है, तू इनको अच्छे से केयर करेगा, ये सब करेगा तो बहुत, एक तो मेंटली तू काफ़ी अच्छा फील करेगा और बात करेगा इनसे तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा करके। तो मैं सोचता था कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ना होता है, ये क्या कर रहे हैं करके। मगर कुछ सालों बाद जब मैंने केरला में नौकरी करना सब शुरू कर दिया, तो उस टाइम पे मैं अकेले रहता था, ठीक है, मैंने क्या किया, एक दिन जाके एक मनी प्लांट लिया और उस मनी प्लांट का ख्याल रखना शुरू किया। और उस मनी प्लांट का ख्याल रखना जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि सही में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना हमारे कंपेनियन जैसे बन जाते हैं, हमारे रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। इनके साथ वक्त ना बिताए तो थोड़ा अधूरा लगता है, और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडोर प्लांट्स रखने के प्रोस क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, साफ हवा मिलेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रहेगा वो आपके लिए, और आपके आसपास के एयर में जो है मॉइस्चर ऐड कर देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीनरी हमारे कमरों में जो है हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में और फिजिकल रिकवरी को एड करने में बहुत हेल्प करती है, तो विन विन सिचुएशन है भाई। आप लो मेंटेनेंस वाला कोई एक स्मॉल इंडोर प्लांट ले सकते हो जिससे आपको भी बेहतर महसूस होगा। और यही बात बोलते हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
2: ऑलिव रिचार्ज.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज आपको याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि सीधा आप इंस्टाग्राम खोलिए, radioolive.qa सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए अगर नहीं किया तो, और एक ही बार दबाना, ठीक है। उसके साथ साथ आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हमें सुनते हुए स्टोरी आप डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे, और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ऑन एयर में कई दफ़ा हम जो है कॉन्टेस्ट खेलते हैं, वैसे ही ऑनलाइन भी हमारे सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू भी हम कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो आपके पास जीतने के मौके भी रहेंगे। और यही बात बोलते हुए हम याद दिला रहे हैं फिर से कि अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कीजिए, और कहते रहिए जियो बिंदास।

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिस्निंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे बहुत जल्दी खत्म हो गए, पता नहीं चला, मगर कोई गल नहीं जी, फिर मिलेंगे हम कल दोपहर को 2 बजे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। तो जाते जाते जाते यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

मैन यार थर्सडे ऐसे लग रहा है कि अभी कल ही की बात थी। थर्सडे रात को हम बात कर रहे थे कि अरे यार वीकेंड आ गया, चला भी गया यार। लेकिन वीकेंड के जाने का रिग्रेट थोड़ा सा तब भी ज्यादा आपको होता है जब आप जो चीज करना चाह रहे थे वो चीज ना हो। बट दैट्स ओके यार, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक हफ्ते बाद फिर से आ जाना वीकेंड। जैसे सिमरन कौर आ चुकी है अभी जबरदस्त इवनिंग्स लेके। और बताओ क्या हाल चाल है आपके, कैसा रहा आपका आज का दिन? मेरा वीकेंड कैसा रहा और आपका वीकेंड कैसा रहा? तो ये दोनों काम हम थोड़ी देर में कर लेंगे। आप मुझे वॉइस नोट भेज दो और मैं आपको थोड़ी देर में लौट के बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस और आपके दिन के बारे में 3311063 पे भेज दो। सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोल्ड, कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जॉय अलुकास। जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सो मेरा वीकेंड कैसा रहा बताती हूँ यार। जैसे कि मैंने आपको उस दिन बोला था थर्सडे नाइट को, मैं बोल रही थी कि मेरे को भाई इटालियन खाने का बहुत तगड़ा मन हो रहा है कि लाइक मेरे को पास्ता खाना है, मेरे को पिज्जा खाना है। सो मैं अपने मन को बना के बैठी हुई थी और आपको मैंने बताया हुआ है कि जिस दिन मैंने थर्सडे एकदम रज के मतलब अपना मन मर्जी चीट डे करना होता है उस दिन मैं लंच जो है वो नहीं करती हूँ। तो या फिर मैंने भसड़े मचाई ठीक है, और मैंने पिज्जा पास्ता भी खाया और उसके बाद एक फिल्म थी रन, वो मैंने देखी अपने दोस्तों के साथ। फिर हम मिलके डर फिल्म देख रहे थे इन बिटवीन, फिर उसके बाद चाय पी, फिर मस्का बन खाया, फिर सोया। अगले दिन मैंने फ्राइडे को रेस्ट की, बहुत सारी रेस्ट की क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बीच में मैंने एक फिल्म देखी, वो फिल्म कौन सी थी मैं आपको वापस लौट के उसके बारे में बता दी हूँ। ऑल ओवर मेरा वीकेंड जो था वो अच्छा रहा यार, क्योंकि दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया और नींद भी ले ली। और मेरे को आए भाई क्या डरावना सपना भी आया था, खैर उस सपने के बारे में बात नहीं करते। 15 मिनट मेरी धड़कन कंट्रोल में नहीं आई थी, ऐसा सपना आ गया था। वो तब होता है जब आप बहुत ही गलत टाइम पे सोते हो, तो वो टाइम 5 से लेके 7 बजे के बीच में मैं सोई थी और भाई साहब कैसे भवक के उठी हूँ यार। खैर मैं आपको वापस दौड़ के उस फिल्म के बारे में बताती हूँ, ठीक है जी बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: गई चुल।
1: सो थर्सडे को जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको एक फिल्म के बारे में बताया था जिसकी रिलीज का मैं वेट कर रही थी। सोनियों के दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ, और फिल्म का नाम है द लास्ट हाउस। इसका मैंने ट्रेलर, एक्चुअली मुझे तनीषा ने दिखाया था, और ट्रेलर देखा तो उसके बाद लगा यार ये फिल्म देखनी है, और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली थी। सो ये फिल्म फ्राइडे मॉर्निंग जो थी वो 10 बजे के अराउंड आ गई थी, और मैंने कुछ 11 बजे के अराउंड फिल्म को देखना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट बिफोर माई ब्रेकफास्ट, मेरे को इतना मन था इस फिल्म को देखने का। सो देखना मैंने स्टार्ट किया, और फिल्म को

जब ट्विटर नया नया आया था तो बहुत तगड़ा ट्रेंड चला था और मैं भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी यार। कि ट्विटर अब एक्स हो गया। मैं कह जी सोनियो की दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। सो आज मैं देख रही थी कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहले जो ट्वीट्स थे वो कैसे थे। सलमान खान का पहला ट्वीट जो था ना जब ट्विटर आया था तब था, अरबाज ने कहा कि ट्वीट कर दो तो बनता है बॉस। और प्रियंका चोपड़ा ने लिखा था टेस्टिंग 1 2 3। और उसके साथ शाहरुख खान ने लिखा था हाय एवरीवन, बीइंग एक्सट्रीमली शाय आई नेवर थॉट आई वुड बी देयर बट माय फ्रेंड करण जौहर, उनको टैग करके बोला इंसिस्टेड दैट आई शुड लर्न टू शेयर माई लाइफ। सो या बहुत सारे और भी थे जो सेलिब्रिटीज ने जिन्होंने अपना पहला ट्वीट जो था वो लिखा। सो अनुष्का शर्मा ने लिखा था फिगरिंग दिस आउट। और आपको याद है कि जब आपने ट्विटर को ज्वाइन किया था तो आपका पहला ट्वीट कौन सा था? स्क्रोल करके देखिए जरा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

भाई साहब, आज ह्यूमिडिटी जो है वो अलग लेवल पे होने वाली है यार। मौसम आपके, सुनो मौसम आपके, सुनो सुन लो आपके साथ। सो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 35 मिनिमम को सुनकर कोई खुश होने वाली बात जो है वो है नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है वो आज रात में आपको प्रॉपर 7 बजे बता देती हूँ, 7 बजे जो है वो 68% होने वाली है ह्यूमिडिटी, फिर 8 बजे 69%, फिर 9 बजे 71% एंड 10 बजे 71% एंड रात के 11 बजे 72% ह्यूमिडिटी होगी। टेम्परेचर होगा 36 डिग्री सेल्सियस। तो जब इतना कम टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी इतना हाई है, भाई साहब वो गाना याद आता है मुझे, मैं पानी पानी हो गई भाई, बैंड बज जाती है, तैयार होके निकलो, इतनी चिप चिप सी हो जाती है। सो विंड जो है, और विंड का कोई मतलब बनता नहीं है जब इतनी सारी ह्यूमिडिटी जो है वो आप लोगों के लिए है। सो यार बड़ा अजीब लगता है कि यार जो जो क्योंकि वैसे भी हमारे पास बहुत सारे एयर कंडीशन एरियाज हैं, लेकिन हर जगह तो पूरा कतर तो एयर कंडीशन नहीं हो सकता ना, लेकिन जो नॉन एयर कंडीशन एरियाज हैं वहां पर जो है वो लोग होते ही नहीं है, क्योंकि लोग वहीं पे भागते हैं। सो यार अपना ध्यान रखिए और पानी वानी पीते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जी ओ बिंदास।

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या, कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm number one.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

तो बिल्कुल हमारे जैसी हंसती है, मतलब एकदम फास्ट कर देंगे तो डॉल्फिन का लाफ हमारे जैसा लगता है। इसीलिए लोग जो है वो अब डॉल्फिन इमोजी यूज कर रहे हैं, मैंने भी करनी स्टार्ट कर दिया। और जो मुझसे पूछता है क्या है तो मैं बता देती हूँ, ये है, अपन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं यार। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदा स्टिल, बट आई लव वही लाफ्टर इमोजी यार। मैं तो फनी वाले ढूंढती हूँ, मैं तो जिफ ढूंढती हूँ भाई, जितने फनी मिल जाएंगे। सामने वाला जो मेरे से चैट कर रहा पागला जाए पूरा यार।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

देखो यार, साल खत्म होने में कुछ ही महीने जो है बाकी बचे हुए हैं, क्या हम सब ने वो कर लिया जो हम करना चाहते थे? जिम वाला जो है वही हमारे पास एक्सक्यूज आता है, हम करते हैं जाना था यार, जा नहीं पाए, ये नहीं है, काम है, बहुत ये चल रहा है, वो चल रहा है। लेकिन आपको मैं थोड़ी सी मोटिवेशन जो है वो देती हूँ। एक न्यूज बहुत ज्यादा जो है वो वायरल हो रही है, 75 इयर्स के जो ग्रैंड पा बोलेंगे उनको, ग्रैंड पा ने 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ी है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 56 मिनट पे। कोई इन्होंने ऐसा एक्सपेंसिव बढ़िया रनिंग शूज नहीं डाले हुए थे, उन्होंने पुराने फटे हुए जूते पहने हुए थे और मतलब कर लिए यार, भाग लिए वो। इसके पीछे पता है रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है कि डिसिप्लिन है भाई, उन्होंने डिसिप्लिन को रखा। और मतलब ये फिलिपिनो ग्रैंडफादर ने कमाल कर दिया यार, बताओ। अब आपको और मोटिवेशन चाहिए? मेरे हिसाब से और नहीं चाहिए। अब अगर आप सोच रहे थे कि आपको रनिंग करनी है या जिम जाना है, प्लीज उठ जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर के, तेरी जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: के बारे में बात करने वाले, उसका नाम है मुझसे दोस्ती करोगे। रानी मुखर्जी का नाम था, पूजा और करीना कपूर का था टीना। अब बात करें कुछ कुछ होता का, तो कुछ कुछ होता में जो रानी मुखर्जी का नाम था वो था टीना, और करीना कपूर का जो नाम कभी खुशी कभी गम में था वो था पूजा। सो या ये जो फिल्म है आप सबने देखी होगी, इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म जो थी वो उम्मीदों पे खरी जो है वो नहीं उतरी। लेकिन बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की, सो ये फिल्म के लिए पहले अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, जीनू मौर्या, जिमी शेरगिल, आर माधवन, संजय सूरी, बहुत सारे लोगों को ऑफर किया गया इनके जो रोहन वर्मा वाला जो रोल था। फिर अभिषेक बच्चन ने आदित्य चोपड़ा को बोला कि यार तो उदय चोपड़ा को क्यों ले लेते हो, तो फिर उदय चोपड़ा ने सबको स्क्रीन पे जो था वो सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा ये पहला और लास्ट टाइम ही होगा उदय चोपड़ा का, क्योंकि इस फिल्म में उदय चोपड़ा से कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सब लोग जो थे वो ऋतिक रोशन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी वो उदय चोपड़ा ने पूरी की और ऑडियंस को जो था वो सरप्राइज कर दिया। सो या मैं आपको वापस लौट के इस फिल्म के बारे में और भी बातें बताऊंगी। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।
1: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
2: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट क्या हुआ कि उनके आसपास जो लोग थे, फैमिली एंड ऑल, फ्रेंड्स वगैरह, वो बोल रहे कि नहीं नहीं तुम बनाओ, और उन्होंने मतलब अपनी अपनी लाइकिंग के अंगेंस्ट जाके इस फिल्म को प्रोड्यूस किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेलियर थी। उन्होंने बोला कि भाई इस फिल्म के बाद अब मुझे इस चीज का पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे को मेरे इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए, ना कि बाकी लोगों को फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली ऋतिक रोशन जो थे, बैक टू बैक उनकी फ्लॉप्स जो थी वो हो रही थी, एंड उदय चोपड़ा ने ऑफकोर्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उन्होंने काफी अच्छा रोल किया, सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग हो गया था उदय चोपड़ा की वजह से, एंड ये इतने बड़े बजट की फिल्म थी और उसके बाद इसके ऊपर खर्चा हुआ और ये फिल्म चली नहीं, इसीलिए आदित्य चोपड़ा और कुणाल कोहली ने हम तुम का बजट जो था, जो 2004 में ही थी, उसका कम कर दिया था, जबकि वो फिल्म बड़ी कमाल की थी यार। एंड इस फिल्म में एक और बात जो है वो सीन मुझे याद आता है, जिसमें क्या है कि उदय चोपड़ा का कैरेक्टर जो था वो कहता है उस अपने फ्रेंड राज को, कहता है कि पूजा को बोलो कि वो ये वाला कलर पहने और मैं उस तरह की शर्ट जो है वो पहनूंगी। तो राज कहता है कि भाई वो पूजा ऐसा कलर जो है वो कभी नहीं पहनेगी, तो कलर होता है येलो। उससे पहले वो काफी बार वो सीन में किसी मतलब अलग अलग सीन में वो कलर पहन चुकी होती है। सो या उनकी बातों से तो यही लगता है कि उसको येलो कलर पसंद ही नहीं है, वो लाइफ में कभी पहनेगी नहीं, लेकिन वो पहले फिल्म के बीच में ही पहन चुकी है। यार क्या कर रहे हो यार, सुनते रहो रेडियो ऑलिव को, कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ओफो क्या बात है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी काच होता है वो कमजोर नहीं वो जानलेवा होता है। जैसे हम बोलते हैं कि भूखा शेर जो है वो खतरनाक होता है, यहाँ पे न शेर की बात हो रही है न कांच की बात हो रही है, बात हो रही है एक अनहील्ड बंदे की जो कि अंदर से हील नहीं हुआ है, तो वो बंदा जो है वो खतरनाक होता है। ऐसा बंदा दूसरों को कड़वा भी बोलता है, दूसरों से अच्छे से वो बात भी नहीं कर पाता है और दूसरों से कोई रिश्ता जो है वो पूरा सही तरीके से नहीं निभा सकता है। इस तरह से कभी कभी जो ये लोग हैं ना, क्योंकि वो उनके खुद के बस की बात नहीं होती है, वो दूसरों के लिए मतलब नहीं सोच पाएंगे क्योंकि वो खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं, वो खुद ही अंदर से टूटे हुए हैं, वो वुंडेड है। सो ये एक स्टेज होती है लाइफ की जहां पर उस इंसान का बस नहीं चलता है, लेकिन जो सामने एक हील्ड बंदा है जिसको गलत ट्रीट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जब आपको ये चीज समझ लग जाए कि सामने वाला कोई इंसान जो है ऐवें किसी को कड़वा नहीं बोलता, राइट, तो अगर वो सामने वाला आपको कड़वा बोल रहा है और आपको लगता है कि भाई अंदर मामला कुछ सही नहीं है, तो बुरा मत मानो और थोड़ा साइड में बोलो, आप भी स्पेस ले लो। और मुझे लगता है कि हीलिंग जो है ना हर इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर से अगर आप टूटा हुआ खराब फील कर रहे हैं तो फिर आप बाकी लोगों को भी वैसा ही ट्रीट करने वाले हो। थोड़ा स्पेस ले लो, टाइम ले लो, हीलिंग ले लो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। और इस टाइम पे अगर आपके दोस्त लोग आपके साथ है ना, तो फिर सब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों को पता होता है ना भाई ये कुछ भी बोलेगा, उल्टा बोलेगा, हमको पता है ये दिल का बुरा नहीं है यार, इसका ये फेस चल रहा है।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
2: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

सोनियों की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। सो आपका नाम मैं लेने वाली हूँ, अब बस आपको मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे जितना आप नाम अपने लिख सकते हो, अपने दोस्तों के, अपने फैमिली वालों के, अपने, वो लिख के भेज दीजिए, मैं सारे नाम बोल दूंगी। चलो फिर क्विकली अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज हाई हेलो मत लिखो, वॉइस नोट मत भेजना, क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर से आपके नाम जो है वो पढ़ रही हूँ, मैसेज भी ओपन नहीं करूंगे। हुंजन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाहबाज जी थैंक यू सो मच, नजीबुल्ला जी थैंक यू सो मच, इमरान जी, मोइन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, इंतशाम जी थैंक यू सो मच, फैजल जी थैंक यू सो मच, लियाकत जी थैंक यू सो मच, संधू जी थैंक यू सो मच, अजीत जी थैंक यू सो मच, शादाब जी थैंक यू सो मच, प्रशांत जी थैंक यू सो मच, अतुल जी थैंक यू सो मच, इमरान जी थैंक यू सो मच, हसन जी थैंक यू सो मच, सैफुल्ला जी थैंक यू सो मच। क्विकली अपना नाम लिख के भेजो 3311063 पर। हरिकृष्ण जी थैंक यू सो मच, शशिकांत जी थैंक यू सो मच, वैम्पायर किसी का नाम नहीं होता है दोस्त, अपना नाम लिखो यार, क्या कर रहा है यार। महबूब जी थैंक यू सो मच, ज्योति जी थैंक यू सो मच, अमित जी थैंक यू सो मच, मास्टर जी थैंक यू सो मच, दानिश जी थैंक यू सो मच, सईद जी थैंक यू सो मच। क्विकली अब अगला गाना शुरू होने वाला है। रिश्वन जी थैंक यू सो मच, हुमायूं जी थैंक यू सो मच, एन थैंक यू सो मच, एमडी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेजो 3311063 पर।

0: वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जे ओबिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: टाइम है जेन ज़ी अल्फा स्लैंग्स का।
1: जेन ज़ी डिकोडेड
2: ऐसे है क्या?
1: दा दा दा।
0: हां जी सिमरन कौर है आपके साथ। मान लीजिए किसी जेंजी ने आपको बोला इट्स सिक्स सेवन, मतलब यहाँ पे इसकी 6-7 की बात नहीं हो रही है, मींस इट्स ओके। सो यार इट्स 6-7 काफी कूल है यार। जेंजी डिकोडेड में हर रोज हम एक वर्ड जो है अल्फा स्लैंग जो है जेंजी वो हम डिकोड करते हैं। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास। और हाँ एक चीज और है, वापस दौड़ के आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाली हूँ। अगर आपकी आदत है, स्पेशली लेडीज की, लड़कियों की आदत है कि रात को टीवी ऑन करके लाइट ऑन करके सोती है, तो ये आपके लिए खतरनाक है। बताऊंगी यार क्यों, थोड़ा सा इंतजार कर लो।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: हुई।
1: भाई साहब मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। रिसेंटली मैंने एक रिसर्च जो है वो पढ़ी है कि जो विमेन जो है रात में सोने से पहले जो है वो टीवी ऑफ नहीं करती हैं, आपके यू नो लैपटॉप पे टीवी पे कुछ ना कुछ चलता रहता है और लाइट जो है वो ब्राइट लाइट ऑन रहती है, ऐसे टाइम पे 70% ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोग जो है वो वेट गेन करने वाले हैं। मतलब ये स्टडी जो है वो 43,000 विमेन के ऊपर करी गई है, जो टीवी की ब्राइट लाइट होती है वो हायर रिस्क जो है वो आपके अंदर लेके आती है ओबेसिटी का, यानी कि वेट गेन का। और इसका ये भी बोलते हैं ये जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना वो नाइट में आपके स्लीप हॉर्मोन्स को भी ब्लॉक करती है एंड इसके साथ साथ आपके बॉडी क्लॉक को भी डिस्टर्ब करती है एंड आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करती है।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

वेलकम बैक जी, मैं जी सुन कि हाल चाल काल सिमरन कौर आपके साथ और चार घंटे पूरे हो चुके हैं और वीकेंड भी जा चुका है और सिमरन कौर की कल्टी मारने का टाइम आ चुका है। वाह वाह वाह, सब कुछ ही राइम हो गया यार। चलो फिर अगले दो घंटे मिडनाइट लाउंज को एंजॉय करिए और जबरदस्त इवनिंग्स को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो कल जो है वो शाम को आती हूँ 5 बजे। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूं कि आप मुझे सैटरडे टू थर्सडे जो है वो जबरदस्त इवनिंग्स में रेडियो ऑलिव पर सुन सकते हैं और अगर आप गाड़ी में सुन रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन भी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जब आप गाड़ी से बाहर निकले या फिर कतर से बाहर निकले तो आप हमें एप्लीकेशन के थ्रू सुन सके। सो ओवरथिंकिंग मत करिएगा ज्यादा, खाने बिंदर वाइश कर देना, चेहरे बड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

कभी किसी एयरपोर्ट पे जाके किसी म्यूजिक को एंजॉय किया है? ऑफ कोर्स अब आप सोच रहे हो कि फोन में करते ही क्या है, जितना वेटिंग टाइम होता है उसमें म्यूजिक एंजॉय करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स और चिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी अलग है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। यस, टुडे इज सैटरडे, लेट्स एंजॉय दिस सैटरडे। सो कभी किसी पल को फील किया है आपने? मतलब दुनिया के कुछ एयरपोर्ट्स में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशन है, वेटिंग एरिया में एक पियानो रखा होता है, कभी कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन बजाता है तो कभी कोई पैसेंजर ही बैठकर एक धुन छेड़ देता है। सोचिए, एक तरफ किसी की फ्लाइट डिले है, कोई घर जा रहा है, कोई किसी से मिलने और कोई किसी अपने को अलविदा कहकर बस वापस आ रहा है। सबकी कहानी अलग है, लेकिन दो मिनट के लिए एक ही मेलोडी सबको एक साथ बांध कर रख देती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि म्यूजिक को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, वो हर लैंग्वेज समझ जाता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर एयरपोर्ट पर आपको सिर्फ एक गाना पियानो पर सुनने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? सो कुछ सफर फ्लाइट से नहीं बल्कि एहसासों से याद रहते हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ। नंबर है 3311106। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3

सोचिए आप एक फिल्म की शूटिंग पर पहुंचते हैं, कैमरा रेडी है, एक्टर्स रेडी हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी रेडी नहीं है। ये सच है। 2008 की आयरन मैन, उनकी शूटिंग के शुरुआती दिनों में कई सारे सीन्स पर जो हैं वो सेट पर लिखे और इम्प्रोवाइज किए गए थे। सो वहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है अपनी लाइंस में खुद भी आइडियाज ऐड करते थे। टीम को नहीं पता होता था कि फिल्म एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट करेगी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना यार, हम अक्सर परफेक्ट प्लानिंग का वेट कर रहे होते हैं, परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, परफेक्ट बातें करना चाहते हैं, परफेक्ट सब कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जर्नी शुरू कर देना ही सबसे बड़ा प्लान होता है। मतलब बाद में चीज़ें परफेक्ट होती रहेंगी, बेटर फील करती रहेंगी, किसी को पसंद आएंगी, किसी को नहीं आएंगी, पर आप अपने काम को, अपने प्लान को बिल्कुल परफेक्टली बस स्टार्ट कर दीजिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। क्या आप हर चीज परफेक्ट होने का वेट करते हो, या फिर पहले स्टेप ले लेते हो और बाद में सोचते हो कि होता रहेगा जो होना है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

So, कभी किसी बच्चे की बात को सीरियसली सुना है? लेगो कंपनी ने एक बार बच्चों से पूछा, तुम्हें हमारे टॉयज में क्या चेंज चाहिए? एक 5 साल का बच्चे ने सिर्फ इतना कहा, ये लोग हंसते क्यों नहीं है? अब कंपनी को बात इतनी पसंद आई कि धीरे धीरे लेगो के कैरेक्टर्स के फेसेस और एक्सप्रेशंस बदलने लगे। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन लेकिन मिलियन डॉलर आइडियाज। कभी कभी इनोवेशन जो है वो बोर्ड रूम में नहीं होता, बच्चों की इमेजिनेशन में मिलता है। सोचिए कितनी छोटी सी बात थी और हम क्या वेट कर रहे होते हैं, भाई पूरी टीम आएगी, बड़े बड़े फैसले होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े आइडियाज आएंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर आप करना चाहें तो अपने आसपास किसी से भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने MBA किया हो और वही आपको बिजनेस सिखाए। आपको बिजनेस एक छोटा सा इंसान सिखा सकता है जिसने शायद लाइफ में स्ट्रगल देखा हो, जिसने शायद लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हों। सुन रहे हैं आप रेडियो 106.3 FM। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे इस गाने के साथ आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में लौट कर आऊंगी। सुन रही हूँ रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

इमेजिन कीजिए आप डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट जाते हो और पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ आपके लिए बुक्ड है, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, बस एक टेबल और शेफ सिर्फ आपके लिए खाना बना रहा है। वैसे ये एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ अपने घर में अपनी माँ के साथ किया है, पर दुनिया में ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो हर रात सिर्फ एक फैमिली या एक ग्रुप को सर्व करते हैं। सुनने में थोड़ा लग्जूरियस लगता है राइट, लेकिन शायद असली लग्जरी महंगा खाना खाने में नहीं है, पूरा वक्त और पूरी अटेंशन में है। और आज इसी बिजी लाइफ में यही तो सबसे रेयर चीज़ है यार। मतलब जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि कई सारे लोग हैं जो स्पेशली हर दिन एक नए मेन्यू के साथ, नई फैमिली के साथ पूरा पर्सनलाइज्ड चीज़ें जो है वो सर्व करते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि ये तो यार सिर्फ मम्मी ही कर सकती थी ना, मतलब और कौन आपके लिए इतनी मेहनत करता है। पर यस, देयर इज सम रेस्टोरेंट्स जो ऐसी चीज़ें भी करते हैं दुनिया में। अब आप मुझे बताइए, आप लग्जरी किसे कहेंगे, महंगी चीज़ों को या क्वालिटी टाइम को? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

कभी किसी बात पर गुस्सा आया है? ऑफ कोर्स आया होगा, और पूरी बात की वजह से फिर पूरा दिन वही बात दिमाग में चलती रही। न्यूरो साइंटिस्ट इसे कहते हैं, हमारी बॉडी को नेचुरल एंगर रिस्पॉन्स लगभग 90 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद जो गुस्सा रहता है वो अक्सर हमारे थॉट्स उसे जिंदा रखते हैं। अब आप सोचिए, मतलब रहना तो उसे सिर्फ 90 सेकेंड था, पर आपने उसे पूरे दिन रखा और अपना पूरा दिन खराब कर दिया। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो बेसिकली मुस्कान आपको हर दिन ऐसी ही चीज़ें बताती है जहां पर हम बार बार वही सीन याद करते रहते हैं। मतलब आप किसी से गुस्सा हो, ऑफिस में किसी कलीग से कोई बात हो गई या फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ और आपने उसे पूरा दिन याद रखा, या थोड़ी देर में भूल जाना चाहिए। मतलब मैं तो यही करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मूड खराब होता है, फिर उसके बाद लगता है यार क्यों अपना मूड खराब कर रही हूँ, और इवन सामने वाले का भी मूड खराब होता है आपको देख के। शायद इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम ना इंसान नहीं होता, हमारा रीप्ले बटन होता है। सो आज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या आप गुस्सा जल्दी भूल जाते हो या उसे दिमाग में रिपीट करते रहते हो? लाइक मी, मतलब मेरे साथ होता है ऐसा, 2-4 घंटे तो मेरे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। सो यू टेल मी कि आप क्या करते हो। 3311063 इज माय नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

शुरू होने से पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पोस्टर। लेकिन पहले के जमाने में ये पोस्टर कंप्यूटर से नहीं बनते थे, आर्टिस्ट उन्हें हाथों से बनाते थे। अब आज के टाइम पर बहुत सारे मूवी के टीजर आते हैं, टीजर के बाद ट्रेलर आते हैं, और ट्रेलर में इतनी सारी चीजें जो है वो आप देख लेते हो और आपको बार बार याद आता है यार उसमें तो ऐसा हुआ था, अब आगे क्या होगा। सो एक जो पोस्टर की बात है वो पहले टीजर वगैरह तो होते नहीं थे, तो पोस्टर्स ही होते थे जो सबसे ज्यादा यू नो हल्ला मचाते थे। सो एक एक ब्रश का जो स्ट्रोक होता था, एक एक कलर जो होता था, वो उन्हीं पेंटिंग को देखकर लोग थिएटर तक पहुंच जाते थे। मतलब उनको किसी ट्रेलर किसी टीजर की जरूरत नहीं होती थी। मजेदार बात तो यह है कि जिन लोगों ने फिल्म्स को पहली पहचान दी उनके नाम ही बहुत कम लोग जानते थे। शायद हर सक्सेस के पीछे ना कोई ऐसा आर्टिस्ट होता है जो तालियों से ज्यादा अपने काम को प्यार करता है। एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या टाइम था यार। मतलब आप सोचिए, मतलब किसी भी टीजर की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी भी गाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस पोस्टर आया और लोगों को समझ में आ गया कि यार ये मूवी तो देखने जानी है। आप किस फिल्म को पहले पोस्टर देखकर देखने गए थे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

तो मैं किसी किताब की बात करती हूँ या लाइब्रेरी की बात करती हूँ। जहाँ पर आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो लाइब्रेरी है, जहाँ शेल्फ्स पर बुक्स नहीं है बल्कि इंसान है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ह्यूमन लाइब्रेरी। मतलब बहुत ही नई बात है, बहुत ही अनोखी बात है, लेकिन एक्चुअली कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज। सो ये जो ह्यूमन लाइब्रेरी की बात है, यहाँ आप एक पर्सन के साथ बैठते हैं, उसकी लाइफ की स्टोरीज सुनते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई रेफ्यूजी है, कोई आर्टिस्ट है, कोई टीचर है। आइडिया सिर्फ इतना सा है कि जितना हम एक दूसरे को सुनेंगे उतना हम कम जज करेंगे। शायद हर इंसान एक चलती फिरती किताब ही तो है, बस फर्क इतना है कि उसे पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है। अब किताब तो आपने कभी भी उठाई, कभी भी रख दी, दो चार पेज पढ़े, फिर वापस वैसे के वैसे रख दी और फिर सालों वो धूल खाती रही। पर इंसान के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं और इमोशंस के साथ आपको टाइम भी देना पड़ता है। अगर आप किसी एक इंसान के साथ आधे घंटे बैठ सकते तो वो कौन होगा? आपका कोई अपना दोस्त, अपनी फैमिली, या आपको लगता है कि यार किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ के नई कहानियां सुनने में भी एक अलग ही मजा है। 3311063 इज माई नंबर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, चियो बिंदास।

0: 106.3 FM.
1: Midnight Lounge.
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

Good evening. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. शो खत्म करने से पहले आज एक बहुत ही खूबसूरत स्वीडिश वर्ड आपके लिए लेकर आई हूँ, विच इज लॉगम. सो बेसिकली इसकी स्पेलिंग है LAGOM, पर इसको बोलते हैं लागम या लॉगम. इसका मतलब है ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बस जितना जरूरी हो. आज की दुनिया में हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है, चाहे वो पैसा हो, फॉलोअर्स हो, शॉपिंग हो, अचीवमेंट्स हो. लेकिन स्वीडन की फिलॉसफी कहती है कि रियल हैप्पीनेस मोर नहीं होती, इनफ में होती है. सोचिए जब आखिरी बार आपने रुक कर ये कहा था कि मेरे पास जो है वो काफ़ी है. मतलब मुझे लगता है ये तो शायद कोई कहता ही नहीं आज के टाइम पे. शायद सुकून वहीं से शुरू होता है जहां पर आप ये कहते हो कि जो है काफ़ी है. सो आज का आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आज भी आप दिल से कहते हैं दिस इज इनफ एंड आई एम ग्रेटफुल. इसी के साथ मैं हूँ मुस्कान. आई हैव टू से मुझे जाना होगा. सुन रहे हैं आप मिडनाइट लाउंज. मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह पर विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस, लॉट ऑफ न्यू कॉल्स. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट. स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM

Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

चांदनी रातें हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।

You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।